म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुमला माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजुभाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

थाई उछिंदा हुदा इसा रात दियूं सो हफ्तार महीना बनी थाई हुना ने का काम गर्दा बेला बीते को पनी नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

काली जांदा तीर खाई लागा बने खावला कांकरो चीरेरा हम खाने कांचा यो बने का सांचा खावला कांकरो चीरेरा यो थोत्रो पाटी रुग नहीं मात्रा यो की आवला सुदीन फिरेरा आता को भाई को मोबाइल की चाई को आवला सुदीन फिरेरा अकासाई ने यो गड़ूला पांखी बॉय बॉय ने कमीलो हम खाने का चायो बने का साचा बॉय बॉय ने कमीलो न दूंदा जानता न तारूंदा जानता ये साई मन को दामिलो दबिले दूंदा बंचूरूंदा रूंदा ये साई मन को दामिलो एकारा साला एकाई गारा नाला एकाई गारा ले ले

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: funnier. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: मेरो नाम वडा नम्बर 8 लादुक।
1: मेरो नाम नारायण कुमारी खत्री, म वडा नम्बर 8 मल्दुङबाट आएको।
2: नाम पम्फा ओली, लादु गाविस वडा नम्बर 8 मल्दुङ।
3: लादु गाविस वडा नम्बर 8, मेरो नाम चाहिँ मनमाया ओली।
4: नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राधिका ओली, लादुक 8 मल्दुङ।
5: मेरो नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी ओली, वडा नम्बर 8 मल्दुङ।
6: मेरो नमस्कार, रिता कार्की हो नाम मेरो, लादु गाविस
7: नमस्कार, मेरो नाम रमा कार्की, लादु गाविस वडा नम्बर 8।
8: श्री दशानको लाइ पछरी मेरो तेरसलाई बोटा भयो ले भई आउँदै दासुरा।

छैन आउने जाने पाइन खबर पनि माइती छेउ के गाछेउ घर माइती छेउ के गाछेउ घर भयो धेरै दिन भगाड छैन किन माइती छेउ के गाछेउ घर।

मेरा आत्मा धूप सन्देव रूप भगवान को गर्छु ध्यान भगवान को गर्छु ध्यान।

0: के सीतालु रे
1: हजुर मलाई के सीतालु भयो गोदामको छायाले
0: कति राम्रो छ गोदामा

नमस्कार रेडियो सैलम समुदाय के फिर बहने भी थोपलो साथ में गाल बाट मद्र प्रसाद साहब को आज विक्रम संबत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 5 तारीख आषाढ़ 21 गते आयतवार पंचमी तिथि अब स्तुति करो आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षण कल्पय।

नमस्कारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।

उल्टा पानी परो पीपल को पता मारम को उठी सीता को आतामा राम को उठी सीता को आतामा राम को उठी सीता को आतामा कृष्ण जी को दयालु मनात दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को बत्तीसे दन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को